नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक नेत्री कड़गम पार्टी के सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती है। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के दूरदृष्टि पर आधारित है। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमेरिकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डबरूबंदी जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमेरिकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा।

0: आकाशवाणी की स्थापना की नौवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही सम्पन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी और भूज केंद्र से प्रस्तुत है विचार बिंदु, विषय जीवन में मार्ग, पठन मीरा सौरभ।

0: उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुरक्षित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण निदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आनंद रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलनाडु विक्टरी कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Indian Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings have been held and tight security arrangements have been put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state talks have been held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswami has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Abhlekar had demanded from them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the Chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information on a social media post, he said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of the farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Pranab Joshi has said government food grain stocks have reached over 604 lakh tons in the country, which is nearly three times higher than the mandatory buffer requirement. In a social media post, the minister said robust wheat and rice reserves are ensuring an uninterrupted supply for welfare schemes in the public distribution system across the country. Mr. Joshi said strong procurement, successful harvest and sustained support for farmers continue to reinforce India's commitment towards food security, farmer welfare and a resilient future. He highlighted that India's food security framework continues to grow stronger under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Russia has announced a ceasefire in its ongoing war with Ukraine beginning today, till May 10th, during celebrations marking the 81st anniversary of the Soviet victory in World War II. The announcement was made by the Russian Defense Ministry following a decision by President Vladimir Putin. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a summit in Yerevan that Russia might avoid displaying military equipment during its May 9th Victory Day parade because of fears of possible drone attacks over Moscow's Red Square. In response, Russian officials warned that any Ukrainian attack on Moscow during the parade could trigger a large missile strike on central Kyiv. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova also criticized Western countries over their stance on May 9 celebrations and accused them of distorting Soviet history. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using the DLS method in a rain-hit match at the Economy Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier, pulling to bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to 19 over a side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell Marsh scored dazzling 111 of 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 of 31 for Bengaluru. Mitchell Marsh was adjudged player of the match. Today, Delhi Capitals would take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today and tomorrow. The Met Department says the thunderstorms are accompanied with lightning and gusty winds are very likely to prevail over Uttar Pradesh, East Rajasthan, coastal Karnataka and Dalsima today. And that is the end of this news bulletin.

0: अहमदाबाद वडोदरा प्रादेशिक समाचार रीता दवे वांचे छे। सर्वप्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में योजनारा सोमनाथ अमृत महोत्सव में तैयारी ऊर्जस्मा। केन्द्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमण कहु कि पश्चिम एशिया में संघर्ष वच्चे देशभर में एलपीजी गैस की कोई अछत नहीं। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवीए दरेक कलेक्टर ने जिले में विकास में वडा तरीके जवाबदारी निभावा और वहीवट में पारदर्शकता लावा आग्रह करो। भावनगर में सरकारी बैंक में करोड़ों रूपया जुड़ाण को बंद मामले चीफ मैनेजर ने धरपकड़। राज्य में आगामी 48 कलाक बाद गर्मी वधवा शक्यता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 11 तारीखे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में सहभागी थशे। त्यारे कृषि मंत्री जीतू वाघाणी गईकाले सागर दर्शन खाते वरिष्ठ अधिकारी साथ एक बैठक योजी आ पर्व की तैयारियों की माहिती मेळवी। तेमणे कार्यक्रम स्थल की मुलाकात लईने समग्र व्यवस्था की समीक्षा पण मेळवी। श्री वाघाणी प्रधानमंत्री ने रोड शो बेरिकेटिंग सहित की व्यवस्था तेमज मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम सूर्यकिरण एर शो सहित तमाम तैयारियों की समीक्षा कर कार्यक्रम में आयोजन अंगे चर्चा की हती। केन्द्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारमण कहु कि पश्चिम एशिया ने संघर्ष वच्चे केन्द्र सरकार योग्य आयोजन थकी देशभर में एलपीजी गैस की कोई अछत नहीं। केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमण दीव में पुस्तक मेला और औद्योगिक प्रदर्शन प्रारंभ कराता सुश्री सीतारमण आ बात कही। तेमणे प्रदेश में गत एक वर्ष में थे औद्योगिक प्रगति की प्रशंसा करी।
1: इस्राइल अमेरिका ईरान वो झगड़ा भी उसके कारण फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ते जा रही है। पेट्रोल का क्रूड ऑयल का आना जाना भी दिक्कत में है। आपको मालूम है एलपीजी के ऊपर बहुत चर्चा हुआ मगर माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए एक कमेटी बनाया। चार पांच मंत्रीगण के साथ रोजाना बैठो देखो हमारे लोगों को एलपीजी का कमी ना होना चाहिए। आप कुछ भी करो ये आदेश दिया हमारे और वो कमेटी बैठती है इसीलिए आज एलपीजी में भारत देश में कोई संकट नहीं है सबको मिल रही है।
0: सुश्री सीतारमण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र ने मजबूत बनाने औद्योगिक सुविधा बढ़ाना और व्यापार उद्योग में सरलता ने प्रोत्साहन आपने केन्द्र सरकार ने प्रतिबद्धता व्यक्त करी हती। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी महिला सशक्तिकरण में सकारात्मक अभिगम ए समय की मांग हो भार आप। नीति आयोग द्वारा आईआईएम अमदावाद खाते टकाऊ विकास लक्ष्य पांच लिंग समानता अंगे योजना एक कार्यशाला ने वर्चुअल संबोधता सुश्री देवी कहु कि रियल टाइम मॉनिटरिंग एप्स डिजिटल फरियाद निवारण पोर्टल और जिला स्तर में सूचकांकों द्वारा सरकार की योजना लाभ वास्तविक लाभार्थियों सुधी असरकारक रीते पहुंचाड़ी शकाय। उल्लेखनीय है कि कार्यशाला में महिला सशक्तिकरण महिला नेतृत्व आधारित विकास और यात्रा आधारित नीति अमलीकरण अंगे चर्चा कर। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवीए दरेक कलेक्टर ने जिला में सर्वांगी विकास में वड़ा तरीके जवाबदारी निभावा और वहीवट में संपूर्ण पारदर्शकता लावा आग्रह करो। गांधीनगर में अदालत में त्रिमंदिर खाते महसूल विभाग ने त्रण दिवसीय चिंतन शिविर ने समापन समारोह में संबोधता श्री संघवीए कहु कि असामाजिक तत्वों पर लगाम कसवा पैसा के परिपाक जेवी दरखास्त पर निर्णय लेता पहला पुलिस अधिकारियों ने सांभळी ने महत्तम कड़क पगले लेवा जोईए। श्री संघवीए पारदर्शक रीते चूंटणी प्रक्रिया ने वहीवट कार्य में रात दिवस एक करीने समूह कार्य करने बदल महसूल विभाग ने प्रशंसा करी हती।
1: જે ઓફિસિસ તમને એવું લાગતું હોય કે સૌથી વધારે પબ્લિક ઇન્ટરેક્શનમાં જે પબ્લિક ત્યાં વધુમાં વધુ જાય છે એને સેન્સિટાઇઝ કઈ રીતે કરવું? અને જો સેન્સિટાઇઝ નહીં કરી શકીએ તો તમારા 3 દિવસની પ્રેક્ટિસ હું એવું માનું છું કે તો નીચે સુધી નહીં પહોંચી શકશે। એટલે સૌથી પહેલા ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર તમે કઈ રીતે પહોંચી શકો તેનું પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ।
0: સાણંદમાં માઇક્રોનની મુખ્ય સપ્લાય ચેઇન પાર્ટનર કંપની હોતાઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આગામી 10 વર્ષમાં અંદાજે 700 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે। નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મલેશિયા સ્થિત આ કંપનીને ઓફર કમ અલોટમેન્ટ એટલે કે જમીન ફાળવણી માટેનો એક પત્ર એનાયત કર્યો। આ પ્રસંગે શ્રી સંઘવીએ રાજ્યમાં સેમી કન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન માળખું વધુ મજબૂત બનશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો। તેમણે કહ્યું કે અદ્યતન ઉત્પાદન અને કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા એઆઈ સંચાલિત યંત્રોના ઉપયોગથી થતી પ્રક્રિયા એટલે કે ઓટોમેશન ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી સ્થાનિક સ્તરે ટેકનોલોજીકલ પ્રગતિ થશે અને મોટા પાયે રોજગારીની તકોનું સર્જન થશે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ગાંધીનગરથી અમદાવાદ સુધી મેટ્રો ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી દરમિયાન તેમણે મુસાફરો સાથે સંવાદ કરીને

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लांग ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुईस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।

0: सुनेंगे आकाशवाणी शिमला चार के लिए संदीप मंदास गुप्ता कोलकाता।
1: इधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया

0: विदिथलाई केविथेगल काची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS अलंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन को संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुदुचेरी AIADMK के सचिव के अंबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में अप्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमांड नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मे

से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुँचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निश्चय मित्र तैयार, तो पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंडल जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित जारी
2: समाचार प्रभाग में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो यान ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री यान ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों का संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित है। वर्ष 2016 के बाद से यह संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं। एक बड़ा समय साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकाल

0: working together.
1: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जेडब्ल्यू मुद्दे में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
2: ईरान अमयुद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बियार कलीबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ ही समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक

0: और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और मौसम की जानकारी, मौसम विभाग ने आज केरल माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कार्यकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश पूर्वी राजस्थान तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। यह समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है निखिल कुमार।
1: जनशाल हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज भी अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टी विल्टे के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के वक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठों है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।

मुंबई ने व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि

0: सकारात्मक अभिगम ए समय की मांग होवा पर भार मुक्यो। नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी दरेक कलेक्टर ने जिला विकास वडा तरीके जवाबदारी निभावा वहीवट में पारदर्शकता लावा आग्रह कर्यो। राज्य में एचपीवी रसीकरण अंतर्गत 5 लाख थी वधु दीकरीओं ने सुरक्षित करवामां आवी। नीति आयोग द्वारा आईआईएम अमदावाद खाते टकाउ विकास लक्ष्य 5 जातीय समानता अंगे वर्कशॉप योजायो। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी नो 11मो पदवीदान समारोह राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में योजायो। स्थानिक स्वराज्य की चूंटणी कारण कच्छ सहित गुजरात में स्थगित करायेली वस्ती गणतरी की कामगीरी हवे जून मास थी शुरू। जखौ बंदर मछीमारी नो सुवर्णकाळ 500 करोड़ ना टर्न ओवर नो कीर्तिमान मछीमारो अने वेपारीओ में खुशी की लहर। आईपीएल में गई काले लखनऊ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 रन थी हराव्यो। आज दिल्ली कैपिटल्स अने कोलकाता नाइट राइडर्स वच्चे मुकाबलो दिल्ली ना अरुण जेटली स्टेडियम खाते सांजे 7:30 वागे शुरू थशे। हवामान विभाग द्वारा आगामी 5 दिवस माटे टाळझाळ गर्मी नो एलर्ट जाहिर करायु। हवे पछीना मुख्य समाचार 9:30 वागे अपाशे।
1: आकाशवाणी जो ही भुज केंद्र है रजू करियो तो कच्छी कार्यक्रम हलो करियू गाल। कार्यक्रम प्रस्तुति पल्लवी पुजारा।
2: आकाशवाणी जो ही भुज केंद्र आए अने आई सुनोता कच्छी कार्यक्रम हलो करियो गाल। अने अज पांजे विच आईए मंजुला बहन गजकंद तो ई मोबाइल विषे पावटी गाल करेला आव्या आईए। अने ई चे ताक मोबाइल सारो ताज पण मोबाइल जी कितलीक माथी असरू पण आईए तो हलो सुनो अनी जा विचार अने अनी के पांजे स्टूडियो में आप करियो।
3: नमस्ते पल्लवी बहन पांजो मैं आकाशवाणी भुज जो जुजो जुजो आभार तो आज आई मुके हम प्रोग्राम में मुझा विचार रजू करे जो मौको देना।
2: अने पांजे श्रोता के चा तो मंजुला बहन अकड़ा सारे में सारा कवि आई अकड़ा सारे में सारा लेखक आई अने अनी जो नाम उपनाम उर्मी आए तो अनी जे साहित्य विषय पर पा थोड़ोक जानो अनी जे स्वर में।
3: हाँ मंजुला गेला गजकन उर्मी गाम नडे मुझे पखल लुसाए उर्मी कच्छी गुजराती ने हिंदी इन त्रय भाषाएं में आऊं कविताओं ने गजल लिखा थी थोड़ो घणो गद्य पर लिखे हुआ है। कच्छी कविताएं जी बुक पटारो ने गुजराती कविताएं जी हृदय उर्मी अनुक्रमे 2021 और 2023 में प्रकाशित थी हुई। अंजार द हार्मनी आर्ट्स एंड संस्था जो कविताएं जो पहले नंबर जो अवार्ड पर मुके मिलल आए। अज पल्लवी बहन से मोबाइल जी माथी असर ते गाल बोल करे जो मौको मिले हुआ है।
2: जी मंजुला बहन तो अजय कुर सुनाईदा असा जे सुनधल मणि भावर ने भेनरे के।
3: हाँ तो पल्लवी बहन अज आऊं एकरो एड़ो विषय खणी ना आवे या तो जको अज मणि थे काने मोरो सुनाई दियो है तो से आए गालुड़े ते मोबाइल जी माथी असर। मोबाइल जितनी कम थी वसत है उतनी नुकसानी करिंदल पण है। मोबाइल जो वपराश कम पूर तो कहियो ने तज लाभकारक है नका तो लाभ करना नुकसान ज वधारे करे। तो इनमें नंढा बच्चा पंजे चंगुल में एड़ा फसी वने था कि पोए मोबाइल में अनु बाराज नका निकली सके। असो सार ता सुनो ता एड़ा समाचार का झोकरो छोकरो बी छोकरे के मारी वदे कोक छोकरो कोक छोकरी के छोरी पेराई देने ही मारी करो है। बच्चे ने हेरी हेवानियत आवेज क्या नु मोबाइल में एड़ो बरसा दे तो के ई डिसी डिसी में बालूड़ा पर इन वांट पे हली निकले था। कोक एड़ो गेमो को आईए जो को बच्चे के न करे जा कम करे ला मजबूर करिए थी तो वरी कोक गेमो रमी ने इतना लेना करी छड़िए था के पोए इन्हीं के आत्महत्या जो वारो अचे तो पल्लवी बहन ही पांजे समाज जी नबड़ाई है हकड़ी।
2: हाँ मंजुला बहन से आंजी गाल सोड़ो आने सच्ची है भला।
3: हाँ तो पल्लवी बहन बच्चे में मोबाइल की आदत वधे के जी माज ने अंजो पेज ने माँ के पे ई थी तो छोरो मोबाइल ले रही तो त्या सुन दे आ कम बताई गना क्योंकि माँ हेतरी बेटी कोई बे टेको करे वारो पर न तो वेन वटे माँ जी गाल पर सच्ची है। पर पहला मोबाइल नवा पैर पर मावरू हेतरी बच्चे के संभाली तो हुई ज नहीं

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
0: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और कोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
0: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जसल।
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
0: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
0: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
0: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओ, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
0: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर द्वीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर द्वीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की। सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। अब मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
0: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग है जहाँ अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है, सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cit.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: चलो अकेला चलो अकेला। रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी के नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है। अब ये अंग्रेजी साहित्य ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है। जागरी धीरे भारतीर महामानवीर सागर तीरे।
1: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अध्याय मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जन गण मन यदि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा सारय स्थल सिंध हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जल विचरम्मा। शुभ नामे जागे शुभया शिशु नामे वाहे जय दाता।

0: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविन्द्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश इसी कविता का है। जोड़ा सांखों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली में खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविन्द्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविन्द्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर गोविंद भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविन्द्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविन्द्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: रविन्द्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविन्द्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के

0: महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविन्द्रनाथ की पहली कविता है दृष्टि पड़े तापुर टपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविन्द्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ माँ, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूँ मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा, अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। उस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविन्द्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। उनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण दादू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविन्द्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपनी मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার
1: বাংলা তোমারে আকাশ ওর বাইয়ে মেরে প্রাণ মে প্রভু।

0: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी

0: समय आ गया है जब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
1: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला जात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटन विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
0: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहाँ बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहाँ सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
1: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप है। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें

0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है, मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों इन जंगलों में, इस धूल इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट है, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं तुम सबका मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुवादित कृतियां हैं गार्डनर, फूड गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

लाइव का बहुत दोस्तों आज स्वागत है करियो संडे कार्यक्रम सुरहान में। दोस्तों आज सुरहान में असि पेश कर रहे हैं नाटक कितने वक्त का अवां दोस्तन जी फरमाइश हुई नाटक बुधायो अज असि पेश कर रहे हैं मदन जमानी जो लिखल डॉक्टर चंद्र सिंह नावाणी जो हिदायत कियल नाटक मोती जो दानो।

0: घर जलायम। तो बोले विद्याद की बुद्धा के में घरी सुख जी गुजारी में पुत्र वंदा क्या उन्हें जा बाल बचा क्या बस घर में घर थी तो हर वक्त कितने कितने झगड़ा चिड़चिड़ सदा जाते दुश्मन का लड़न दे जान दे जोखम खनी दुश्मन का वही सजे पर घर में रहना नामुमकिन थी तो लाचार पंहिंजे घर मां पाण रेतीअ जी बंदी अॼु ॿुधाए छॾण वञी आयो
1: आहियां
0: दफ़े बंगलाउ खे भोगणो आहे भॻवान राम खे बि हिकु दफ़ो वनवास मिलियो माता सीता खे ॿ दफ़ा ख़बर न रखंदो आहे कहिड़ो पाप कया अथमि जो मूंखे टे दफ़ा वनवास नसीब थियो आहे
1: हिंदुस्तान पाकिस्तान थियो तॾहिं खां तव्हांजे अखनि में कूली गिरी कंदो आहियां
0: सिंध में बि छा तुंहिंजा वॾा कूली हुआ
1: न साईं त ज़मीनदार हुआ ज़मीनदार
0: अच्छा
1: साल मुंहिंजे जे ॿुढापे में मां अॼियोसि उन करे दाख़िल हुउसि मां मूंखे ॾिनो सभु कुझु सभु कुझु इन करे माइटनि मूंखे लिखायो पढ़ायो कोन पर मां साईं मूं पंहिंजे पुटनि खे ख़ूबु पढ़ायो आहे
0: तोखे छा कंदो हुओ
1: वॾो डॉक्टर आहे विचो वकील त नंढो इंजीनियर
0: आहे पोइ बि तूं अञा कोन गिरी थो करीं
1: हाकिमा

0: जो छो मुखा का गलती थी आजा
1: मने गलती तो का ना मुझे माफ यू का थी आए दिन मुझे नालो रखे भगवान अरे बन जी तो माँ इंसान गुन सके तो पान के चौंया तो भगवान बुद्ध जी आते हैं बुद्ध यार बुद्ध तू भी मुंह जगह बन आते हो दिन तंग मानू आई तू जगह आता है वहीं सदैव वक्त के आसान जी पहला खिदमत करनी आश्रम के साफ सुथरे रखी ये ही शहर
2: हाँ
1: मुझे बुक करते कमी हर टाइम के साथ पे ली
2: पानी
1: हाँ तेरे सब कम तू अकेले पान कही
2: पान जो
1: कम है ना तेरे सब तू कोई भी कम कार का कौन सा दी ये
2: थे थो थो बुदा बुदा
3: अरे भगवान बोली संसार में हर छोजो जाप थोड़े ही हिंदू है
1: मनी तो ना तेरे छोजो जाप ना आए तब बुबे अब कहाँ जिये तुम वजाया सब नंबर वजा कम करी थो आसा सब बतंग जा सब दम कंडा सी
3: मक्कुली है अब यह मक्कुली है सभी जनार जंजो बार खंडे खंडे आंसे तपे जीवे तो आंसे तपे जीवे ये तो जंजो बार खंडी हाँ अब क्यों भी बिकर हैं जंजो बार दिन का खराई तो आए गलती थी हुए तो भी गाल याद अथम पुटन हाँ पुटन कोशिश करे तुझे बार न खाया है
1: तुझे अंदर का गाजी शक्ति आए पर दिल बड़ा हित लाल हिन मूर्ख जी ने बंद बधी कर भल जिया ना तू कहेंगे बाल वेन के खाना में मजे पर तुझे मरना गांव पे तुझे अतिय के तक कुने गई अत्ता गई शमशान बोलते हैं वो बंदा
3: सच तो चाहिए यार सच तो चाहिए बेली तुम आपकी खबर में खबर नहीं चल रहा आदमी कहीं बेखबर है हाँ मुझे कुछ करन कुछ हाँ कुछ करन कुछ
1: अरे
3: क्या करन कुछ
1: बाबा कुछ नहीं कहा लेकिन यहाँ से भी बदले से ठीक करना भी
2: हाँ
1: अब तो हम बात तो चुपचाप गुजारने लगे हैं यार
2: लगी तू को क्यों अंदराने अंदराने मैं कि खाने को दे रही भाई ऐसा पाँच खिला दो भाई अच्छा जब तो खिलाएं दो
1: यार से
2: अरे मैं सच यार आज
1: हाँ तुम तो बारे में यार कर रहे हो यार
2: यार से
1: यार भूल तो कर मुझे कि अपन समझ कर ना बड़ी दुकान हो गए तो मैं बैंक समझी वाली बात तो क्या है हाँ
2: ये क्या
1: क्योंकि अपन ने नहीं
2: बस खाली समझी यहाँ बैठी है
3: यार क्या पता का पेट्रो जान यार के ऐसे वाला पता है तो जब तू घर के लिए बुधा आश्रम में छुआई
2: नहीं बस यार ये ही कभी भगवान के उस प्रशान का हित पहुंचा आया उस दिल के तुम कुछ दिन चार दिन बदन सा बुधा आश्रम में गुजार दिसा
1: यार के
2: वह पहुंचे वहां पर कुछ धारा धारा

सारी लिखी याक बंदना पर बुधाते में बुद्ध धरती जी लठ पंजी हिगे दे जीवन सफर जो सारो बंदना इन उम्मीद में मुसाफिर जो पार्ट हुए

0: başa kurulacak olsa bir tane ol. Kayyara o kayıp kuna ekra. Beni bende bacak ekra.
1: Yaşa, iyi o da bu da. Tuhuji putranı sonucu viran kiye kayo.
0: Yar. Musa salakana kalsa var. Enen paramın karşısına kalsa var. Sarkar bana. Sarkar bana. Sarkar bana. Sarkar bana. Yara baca yaptı ne ki bozu baba. Yoktu değil. Sarkar bana. Are, are, aku tak tahu muka nak kata apa tu. Cuci cari rumah tu mana kawan. Cuci cari rumah tu mana kawan dia tahu muka sama. Maju pergi putar dia cara macam cari mana lah.
1: हर रात का पूर्व सुबह जरूरी है। मैं हर सुबह हवाएं सिद्ध की नई रोशनी।
0: हाँ, हाँ जाता। तुम के ज़िंदगी में जल्दी सुबह इंदो, रोशनी आने दो। बस यार, बस यार। बाहर तो जो तुझे खुद बारिशाज़ जी सहजीर हो रहे तो आए हुए। अरे मैं खुद बारे साजी से जी हो रहे हुए हैं उन मैं खुद बारे साई जान सरिया उन मैं खुद बारे साई जान सरिया मेरी
2: बच्चा मैं बच्चा ओ आना हेलो हेलो जल्दी हेलो छापो छापो यार चुप हो गए
0: क्या मुबारक हो
2: कदरी कदरी तक कुछ नहीं खा नासाज हुआ सुई सुबह जो उठी माला पे फिर यही तो माला फेरी दे फांसी किरी पियो आप इसमें खबर मोक लिया था मैं

0: रुकल हाँ भाई छो आयो हाँ
1: पानी पैंजी बॉडी यानी मृतक शरीर बाहर नहीं जो है जी है मरण बैद जो शरीर अंग अखियों किडनी वगैरह पैंजे कम अचन
0: क्या पैंजी पैंजी बॉडी जो नी पकड़ हो गए हो
1: हाँ ये दिसो दिसो अंग काम है जी काफी
0: जी काफी
2: सेट नहीं
3: मोती जो दानो अमी बुधी रहा हुआ ही नाटक भाग उठंदर कलाकार हुआ सर्वश्री वेडो रफिक कुमार घनशाणी रवि आडवाणी लक्ष्मण जसूजा वीरेंद्र वासवाणी नारायण मैरचंदाणी लेखक मदन जुमाणी हिदायतकार डॉक्टर चंद्र सिंह नवाणी तो दोस्तों अज की पेशकश बस एतरी अवखा इजाजत चाहूं था नमस्ते।
4: मित्रों आकाशवाणी नो आ अमदावाद वडोदरा केन्द्र छे हिंदी फिल्म संगीत सांभळीए कार्यक्रम में प्रथम गीत मोहन कानन ना स्वर में फिल्म क्वीन

0: रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है
0: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: सब लो सब लो सब लो काम वासी हो, केवाईसी अपडेट का मैसेज में अवकर्षो नहीं, तरत केवाईसी अपडेट करा भी लो। जो ओखाड़ ये सरनामा कोई बदलाव न हो तो तुम्हारी बैंक के एटीएम के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इतने के किसी पास जाओ अथवा बैंक पर रजिस्टर्ड ईमेल के मोबाइल नंबर के बैंकिंग ऐप के पत्र द्वारा मेरी स्वा घोषणा करो। अरे जो कोई बदलाव हो वो ओखर अरे सरनामा नु सौ नव प्रमाण बताओ। खातों सक्रिय राखी ने बैंकिंग सेवाओं नो लाभ उठाओ। तुम्हारो केवाईसी अपडेट करावा माटे तुम्हारा नजीक ना ग्राम पंचायत कैंप के बैंक की शाखा में जाओ।
0: आरबीआई कहे छे जानकार बनो सतर्क रहो।
3: ओछा ब्याज मा लोन जोइए पण एप थी
1: वाहो
3: अजाणे एप थी बचो।
0: आरबीआई कहे छे
1: जानकार बनो सतर्क रहो।
4: मोटी बहु आ तुम्हारा नाम आटली पर शू उतावल हती।
5: अरे
4: अने नानी आ तारा नामे अने आ तारी डिंगली ना नामे मारी दादी हा तुम्हारा नामे
6: बदज
0: जानकार बनो सतर्क रहो।
1: बदलो बदलो आदत बदलो
0: मशीन में पक्का नाका पहला चेक नाका करा शू।
1: बदलो बदलो आदत बदलो हवे नजीक ने बैंक में जाई फाटेली चूरी नोट बदलावो। जो बैंक ना पारे तो आरबीआई ने ओम्बुड्समैन ने फरियाद करो। आरबीआई कहे छे जानकार बनो सतर्क रहो।
0: हो गए इंतजाम। किसका फीस का दिखा 20,000 का लोन तुरंत बताए कौन दे रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है
0: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: ओछा ब्याज मा लोन जोइए पण एप थी
1: वाहो
3: अजाण्या ऐप थी बचो।
0: आरबीआई कहे छे
3: जानकार बनो सतर्क रहो।
0: हो गया इंतजाम। किसका फीस का दिखा 20,000 का लोन तुरंत बताए कौन दे रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: सही
0: वित्तीय बचाव करे
7: आपका बचाव। 40 ऊपर जाए पारो तो समझी लो के स्वास्थ्य माटे सावचेत थवानो छे मारो। जो तापमान मा सामान्य करता 5-7 डिग्री नो वधारो 2 કે તેથી વધુ દિવસ સુધી માં થાય તો આ સ્થિતિને કહેવાય છે હીટ વેવ એટલે કે લૂ। આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં તંત્ર દ્વારા તો હીટ એક્શન પ્લાન એક્શનમાં મૂકવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ માટે નાગરિકોએ પોતે પણ સાવચેતીના પગલાં લેવા જરૂરી છે। જેવા કે ઉનાળામાં ચા કોફી કે કાર્બોનેટેડ પીણાને બદલે લીંબુનું શરબત છાશ વગેરેનું સેવન કરો। દોડતી બહાર નીકળતી વખતે માથું ઢાંકવા ટોપી ગોગલ્સ કે છત્રીનો ઉપયોગ કરો। મસાલેદાર ખોરાકને બદલે પાણીનું સારું પ્રમાણ ધરાવતા મોસમી ફળો જેવા કે તરબૂચ ટેટી વગેરે બધું લો। આછા રંગના સુતરાઉ કપડા પહેરો અને તેમ છતાંય જો લૂ લાગે તો તાત્કાલિક ઓએમએસ અથવા મીઠા અને સાકરના પાણીનું સેવન કરો। ચાયડાની જગ્યા અને બને તો ઠંડક વાળી જગ્યાએ રહો। ઇમરજન્સીમાં ડોક્ટરનો તાત્કાલિક સંપર્ક કરો। પ્રકૃતિ તો પોતાનું સ્વરૂપ બતાવશે જ, અને જો સાથે મળીને રહેશું સચેત તો લૂના પ્રકોપ સામે થઈશું સુરક્ષિત।
0: હો ગયા ઇંતજામ। કિસકા मुझे की फीस था लिखा 20,000 का लोन तुरंत बताए कौन दे रहा है ब्याज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर हो गया इंतजाम पगार

सगर्भा महिलाओं ने तथा धात्री माताओं ने मरता आहार बाबते कोई फरियाद हो तो संबंधित जिला पंचायत ना फरियाद निवारण अधिकारी श्री ने अर्जी के फरियाद करी शकाय छे। अने जो आ अधिकारियों ना निर्णय थी संतोष न थाय तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर ने सीधी अर्जी के अपील करी न्याय मेळवी शको छो। फोन नंबर 07923 58490।

आप सुन रहे हैं आपका हिंदी फिल्म संगीत आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा रजू कर रही थी बिन फिल्मी की तो प्रतीक्षा श्रीवास्तव अने प्रियांशु सोनी ने सांभळशु गीत छे प्रतीक्षा श्रीवास्तव नु

0: इंस्टॉल कर सको छो। भारत की न्यायपालिका द्वारा ई कोर्ट जो प्रोजेक्ट है एना हेठ बना है एप में तमने विविध जातनी माहिती मिली सकते जेम के केस नो स्टेटस शू है केस की केटली तारीखों पड़ी हवे पछी कई तारीख है सपोज केस कोर्टे कोई ऑर्डर करो तो कोर्ट नो ऑर्डर पर आप दे सकते ऑनलाइन कॉज लिस्ट भी आपने घनी वक्त कहता है ये पर आप ऑनलाइन आ ई कोर्ट सर्विस अपनी मदद थी जो सको छो और संपूर्ण मफत है इंस्टॉल करवानो के सब्सक्रिप्शन लेवानो कोई एनो प्रश्न उपस्थित थतो नथी एक सामान्य नागरिक के जे इंटरनेट सेवाओ धरावतो मोबाइल वापरी सके छे ए ई कोर्ट एप ने डाउनलोड करीने एनी एमाथी ए जेने जरूरी छे माहिती ए निकाली सके छे नागरिक छे कोई वकील छे पक्षकार छे और इट इज ओपन फॉर ऑल आ दरेक माटे छे
1: ओपन फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल
0: फ्री फॉर ऑल यस सर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन से विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज को कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्रा ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सोनू दास वर्मा आप मेरे हटा सुगम संगीत रचना वटी हितेन आनंद परानी प्रसारण आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा राजकोट और भूज केन्द्र थी कर बपोर 1:20 थी हम गुजराती में समाचार सांभशो।

0: संबंधी प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण में 1000 वर्ष पूर्ण होने निमित्त सोमनाथ स्वाभिमान परिवार सहभागी थे।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विनाश से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों और मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनः निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का भी स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कोलकाता पहुंचा तो नवा चौटाला भाजपा धारासभ्य साथ बैठक योजना तेना पार्टी धारासभ्य निर्दलीय पसंदगी कराश राज्य नवा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आती का शपथ लैसे। आ पहला श्री शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करी हती।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विकास भागीदारी वैश्विक कार्यदल आकस्मिक सहारे में भारत की भूमिका और नवी पहल पर भारत का वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका ने रेखांकित करी। सुरीनाम में पारामारिबो में प्रगति में भागीदारी विषय पर सत्र में संबोधता श्री जयशंकर ने राष्ट्रीय और वैश्विक हित में संकलन स्थापित करना विश्वास पात्र भागीदारी पर भार आया। श्री जयशंकर ने कहा भारत सुरीनाम में विकास में भागीदार बनशे।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स, भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान दे रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
0: पहला श्री जयशंकर सोरेनाम में विदेश मंत्री मेलविन बगवा साथ संवाद कर। विदेश सचिव विक्रम मिश्रे संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय सहकार राज्य मंत्री और भारत मेटे विशेष दूत रीम अल हाशिमी साथ अबुधाबी में बैठक करी। बने नेताए भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक व्यूहात्मक भागीदारी और परस्पर हित में वैश्विक मुद्दा की समीक्षा करी। विदेश मंत्रालय ने जनवरी मुजब अन्य पक्षीय व्यापार रोकाण

0: और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: जीवन प्रसारण आप हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गुजरात पर भी संभाल सकते हो। मुख्य समाचार में भी हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/gu और हमारा एक्स हैंडल AIR_news_ABID में फॉलो कर सो। आकाशवाणी पोतानी स्थापना ने 90वीं वर्षगांठ निमित्त आज राष्ट्रीय बातमीपत्र दिल्ली में मैराथन योजी। आकाशवाणी भवन की शुरू थे आ दौड़ कृषि भवन, रेल भवन, मिन रिजर्व बैंक भवन के पसार थे आकाशवाणी भवन में खाते पूर्ण थे। आकाशवाणी ने दूरदर्शन सहित प्रसार भारती कर्मचारियों और परिवार सभ्य मैराथन में भाग लीधो। प्रसार भारती मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO गौरव त्रिवेदी और आकाशवाणी महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आ दौड़ में जोड़ाया था।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए यह उस परिमाण कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना है।
1: विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कोस्टारिका में पार्टनर सैन जोस पहुंचा। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि जो कोस्टारिका में नया चुनाव राष्ट्र प्रमुख लॉरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो ने उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करते। आ मुलाकात दरमियान श्री मार्गरेटा विविध महानुभावों, उद्योगपतियों और भारतीय समुदाय ने सभ्य। संरक्षण संशोधन और विकास संगठन DRDO तथा भारतीय वायुसेनाए गईकाले ओडिशा में बजाकांठा पर व्यूहात्मक अद्यतन अंतर वधारवाने क्षमता TARI हथियार ने पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संचालन कर। संरक्षण मंत्रालय एक निवेदन में जानव्य मॉडल रेंज विस्तरण किट TARI देश ने पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो एक अग्रेसर हथियार ने चौकसा वाला मार्गदर्शित हथियार में रूपांतरित करे। मंत्रालय जनावी DRDO ने अन्य प्रयोगशालाओं साथ हैदराबाद में इमारत संशोधन केन्द्र द्वारा डिजाइन और विकसित करायेली TARI नो उद्देश्य जमीन आधारित लक्ष्य नष्ट करो उच्च क्षमता वाला हथियार ने मारक क्षमता और चौकसाई वधारवानो छे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स वच्चे मुकाबले थशे। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में सांजे 7:30 आ मैच शुरू थशे। दिल्ली की टीम अक्षर पटेल और कोलकाता की टीम अजिंक्य रहाणे की आगेवानी हेठ मैदान में उतरशे। पॉइंट टेबल में हाल दिल्ली की टीम 7मा और कोलकाता की टीम 8मा क्रमे छे। आ पहला गईकाले लखनऊ में रमेली मैच में डकवर्थ लुईस टन DLS पद्धति की लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 रन से हरा। अंत में मुख्य समाचार फिर एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ने भारत ने सभ्यता और शक्ति नु प्रतीक गणाव्यू। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कोलकाता पहुंचे और चुटाला भाजपा धारासभ्य साथ बैठक योजे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर सूरीनाम में एक सत्र में संबोधता वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका ने रेखांकित करी। DRDO ने वायुसेना ओडिशा में TARI हथियार ने पहली परीक्षण उड़ान सफल संचालन कर। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स वच्चे आज दिल्ली में मुकाबला। आकाशवाणी पर थी समाचार पूरा था। हवे पछी आप 2:30 प्रादेशिक समाचार सांभळी शकशो।
3: आकाशवाणी अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज।

नमस्कार श्रोताओं, जयभारती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाए हैं अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत समीर, संगीत नगीम श्रवण।

इसके साथ ही आज का जय भारती कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कहा इसी वक्त जय भारती कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीत लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं। जय जवान।

0: आप सुन रहे थे फौजी जवानों के लिए हमारा कार्यक्रम जय भारती। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्र से प्रसारित किया गया। दोपहर के 2:15 होने को है। लेकिन सुनिए दिल्ली से हिंदी में दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का

0: अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पन्नीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
4: माइग्रेशन पाथवे।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने

0: विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

केन्द्रमा थिए आप राजकोट अनि भुज केन्द्रमा थिए आप भनेर सुनिरहेको थिएँ ती गीत हो गौरवशाली प्रसारण अवसरे आप सब नो हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम सूर संगात में हाल भारतीय थे आकाशवाणी संगीत संस्कृति और कला ने घर घर में पहुंचाड़ पवित्र कार्य निभाव अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों ने एक मजबूत मंच पूरा पड़ो सूर संगात

Mina, undeva, davvero avrò tempo per te. आकाशवाणी ने गौरव बनता नव वर्ष की उजवणी भाग रूपे आकाशवाणी ने प्रसारण यात्रा में योगदान आपनार प्रसारण कर्मी साथ की बातचीत पर आधारित विशेष कार्यक्रम शब्दों में महत्व यादों बुधवार बपोरे 12:00 आकाशवाणी ने अहमदाबाद वडोदरा केन्द्र पर सांभ चुकता शब्दों में महत्व यादों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। नई दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, न्यूज रेड बाय निशित कुमार। कांग्रेस बंगाल सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी हैज बीन इलेक्टेड द लीडर ऑफ द बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी इन वेस्ट बंगाल टुडे, पेविंग द वे फॉर हिम टू बिकम द फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। बीजेपी सोर्सेज सेड अधिकारी नेम वाज प्रपोज्ड एट द लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग एंड फॉर्मली अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एमएलएज एंड सीनियर पार्टी लीडर्स।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: The swearing-in ceremony of the new BJP government will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Government has a domestic EPD supply across the country smooth and no dryout has been reported at any distributorship. Addressing an inter-ministerial briefing in the Delhi Secretary of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that the government's efforts have been to ensure that domestic consumers do not face

जवाबी कार्यों में निर्णय के संतोष में था तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी की अपील करी न्यायमूर्ति शतोचल फोन नंबर 0709 232 5849

नमस्ते, ये आकाशवाणी आहे। हाणे टे मंत्रा गुपचंदानी खां देश ऐं विदेश जा समाचार ॿुधंदो। सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टीअ जो प्रमुख अॻवान सुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल जो नओं मुख्यमंत्री बणिजंदो। डीआरडीओ ऐं भारतीय हवाई फौज स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा जी पहिरीं कामयाब हवाई उॾान आज़माइश कई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदर खे भारत जी मज़बूती, एकता ऐं तहज़ीबी शक्तिअ जी निशानी ॼाणायो। अमरीका जी हिकु अंतर्राष्ट्रीय वापार अदालत राष्ट्रपति ट्रंप जे 10% टैरिफ खे गैर कानूनी करार ॾिनो। अमरीका जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चयो, अमरीका ऐं यूरोपीय संघ इन ॻाल्हि खे यकीनी बणाइण में गॾु आहिनि की ईरान वटि एतिरी हथियार न हुअणु घुरिजे। ऐं आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स जो मुक़ाबलो अॼु शाम कोलकाता नाइट राइडर्स सां थींदो। हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा। भारतीय जनता पार्टी जो बर्थ नेता शुभेंदु अधिकारी ओलह बंगाल जो नओं मुख्यमंत्री थींदो। ओलह बंगाल में बर्ख बीजेपी अॻवान शुभेंदु अधिकारीअ खे ओलह बर्थ सां थींदो। हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा। भारतीय जनता पार्टी जो बर्ख नेता शुभेंदु अधिकारी ओलह बंगाल जो नओं मुख्यमंत्री थींदो। ओलह बंगाल में बर्ख बीजेपी अॻवान शुभेंदु अधिकारीअ खे ओलह

0: ही नाम के लिए, उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: तमिलनाडु में समाजवादी पार्टी टीवी के नई सरकार जी रचना लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ए बी सी के खा टेको जी गुरु कई आहे। पंजन विधायक संग कांग्रेस अग्नि टेको दिनो आहे। बिन विधायक वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ए सी पी एम पार्टी टीवी के खे बिना शर्त पुठभराई ॾियण जी पधराई कई आहे। वी सी के अॼु या सुभाणे शाम बैठक में पंहिंजो फ़ैसिलो ज़ाहिर कंदी। रक्षा खोजना ऐं विकास संगठन DRDO ऐं भारतीय हवाई फ़ौज काल्ह ओडिशा किनारे खां पारा हथियार जी पहिरीं कामयाब हवाई उॾाण आज़माइश कई आहे। वधीक तफ़सील असांजे नव निगार खां।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक वार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत में DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन हासिलात लाइ DRDO, हवाई फ़ौज, DCPP ऐं उद्योग जगत खे मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। श्री सिंह इन खे भारत जी स्वदेशी रक्षा सग खे अॻिते वधाइण तरफ़ हिकु अहम हासिलात सॾायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर निर्माण सोमनाथ मंदर जे महूरत जा 75 साल पूरा थियण जे ॾिस में सोमवार ॾींहुं गुजरात वेंदो। देश जे पहिरे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 11 मई 1951 में वर निर्माण थियल सोमनाथ मंदर जो महूरत कयो हो। प्रधानमंत्री अॼु हिकु राष्ट्रीय दैनिक में लिखियल लेख में इन जी मालूमात ॾिनी। श्री मोदीअ चयो त कुझु ई महीननि जे अंदरि सोमनाथ मंदर सां लाॻापियल ॿिन अहमियत भरियल आयोजननि में शिरकत करण संदसि जे लाइ ख़ुशि नसीब जी ॻाल्हि आहे। हिकु रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिका सिंह।
1: हे समाचार तवी आकाशवाणी ते बुधी रहा आयो। वधिक समाचारन जी तफसील जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट news.air.gov.in खे फॉलो करे सघो था। ऐं हे समाचार तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते बि ॿुधी सघो था। अमेरिका जी हिकु अंतर्राष्ट्रीय अदालत राष्ट्रपति ट्रंप जे 10% टैरिफ खे गैर कानूनी करार ॾिनो। यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय वापार अदालत जे 3 मेंबरनि वारी बेंच फैसलो ॾिनो त राष्ट्रपति ट्रंप वापारी कानून जे तहत अमेरिकी पार्लियामेंट पारां ॾिनल इख़्तियार जी बनकड़ी कई आहे। नंढड़नि कारोबारनि राष्ट्रपति ट्रंप जे टैरिफ सां लाॻापियल फैसले खे अदालत में ललकारियो हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमेरिका ऐं यूरोपीय संघ इहो यकीनी करण लाइ गॾु आहिनि त ईरान वटि को बि एटमी हथियार न हुअणु घुर्जे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप चयो त यूरोपियन कमीशन जे सरबराह

ஆக்சுவலி சார்ந்து வாழ்வதையும் சயின்ஸ் அனைத்து வாழ்வுகள் ஏஷியாஜி சுகத்தை அழைத்து சர்ச்சாத்தை ஸ்ரீ பச்சோ பதை வழக்க பக்க இந்த தலைப்பு ராஜி ஆகும் ஜன்ஹி நாரன் ஜி ஹத்யா கரண வாரி ஹுக்குமரான கே ஹத்யா ஹாசில் கரண ஜி இஜாஜத் நா மிரவர் ஜி ஜேசா லக்கி நாரன் ஜி ஜான் உன்னி சகுந்தி ஹுங்கி யூரோப்பிய கமிஷன் ஜி சர்பரா உர்சுலா ஃபாண்டேர் லைன் பர் புஷ் வாரி ஜி சோஷியல் மீடியா பர் தஸ்திக் கை உனி அக்வானன் ஒரு ஏஷியா சமாதா பல வாக்கிங் இலாக்கை வாழ்வதை சகண்டு சேர்க்கவத்தை வாழ்வுள் கை गृहमंत्री अमित शाह आत्मावधि नई दिल्ली में बोर्ड एलू के नू जनवरी तैयारियों की निर्जासानी बैठक की सरबराई कंदो बैठक में मुख्य ध्यान बोर्ड जो अगवाती अनुमान ए शुरुआती चिता सिस्टम के मजबूत करने ते रहंदो आकाशवाणी राष्ट्र गान पंहिंजे शानदार सेवा जा नवे साल जे मौके ते मैराथन जो आयोजन कयो लगभग 3.5 किलोमीटर जी मैराथन आकाशवाणी भवन का शुरू थी यह मैराथन कृषि भवन रेल भवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भवन गई आकाशवाणी भवन पे खत्म थी मैराथन पूर्व कंदरन सभी शिरकत कंदरन के मॉडल बनाया उड़ा पुरुष और महिला मिनी कैटेगरी में अव्वल तीन भागवत कंदरन के ट्रॉफी अतः कही गई असंजी का बोला प्रोफेसर भारतीय जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी आकाशवाणी जी डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन इन मैराथन के रवाना कर रामधन पास रुक कंदे आईपीएल क्रिकेट में अब दिल्ली जी अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स जो मुकाबलो कोलकाता नाइट राइडर्स से थींदो मैच शाम जो 7:30 बजे थींदी इन खां अॻु काल राति लखनऊ बरसात जे करे मुतासिर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नवन सिंह को शिकस्त देनी हुई मुख्य समाचार एक बार बेहद बदला भारतीय जनता पार्टी के बर्क अगवान हिंदू अधिकारी उन्हें बंगाल जो नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे डीआरडीओ भारतीय हवाई फौज स्वेदी ड्राइव किया

मसालेदार खोराक में बदले पानी सारू प्रमाण दिलाता मांस में पाओ जिला के तरबूज टेटी वगैरह बदलो आचार रंगा सुतराव कपड़ा पहनो पर टाइम छताए जो लू लगे तो तात्कालिक ओ आर एस अथवा मीठा अन्य साकर में पानी का सेवन करो चार वाली जगह तनिक बने तो ठंडक वाली जगह रहो इमरजेंसी में डॉक्टर में तात्कालिक संपर्क करो प्रकृति तो पोतानु स्वरूप बताशे ज पर जो साथी मरीने रहशो सचेत तो लू में प्रकोप सामे थे सुरक्षित।

0: ఆకాశ స్కూటంతో వాడు చేయడే పోషకం చెప్పే
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अक्सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त

यह समारोह भारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वैतरिक कड़गम टीडीपी को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली बीसी के पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी है। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है।

मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने

0: समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया रोहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे आज ना मुख्य समाचार। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन रायडूए जणाव्युं कि भारत विश्वनुं सौथी झड़पथी विकसतुं उड्डयन बजार बन्या पछी हवे विमान भाड़ा पट्टा अने धिराण माटे एक अग्रणी वैश्विक स्थळ बनी रह्युं छे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरे सुरीनाममां एक सत्रने संबोधता वैश्विक राजनीतिमां भारतनी भूमिकाने रेखांकित करी। डीआरडीओ अने वायुसेनाए ओडिशामां टीएआरए हथियारनी पहेली परीक्षण उड़ाननुं सफळ संचालन कर्युं। आकाशवाणीए पोतानी स्थापनानी 90मी वर्षगांठ निमित्ते आजे राष्ट्रीय पाटनगर दिल्हीमां मेराथोन योजी। प्राकृतिक कृषि अन्वये करवामां आवी रहेली कामगीरीनी समीक्षा अर्थे लोकभवन खाते बैठक योजाई। प्राकृतिक कृषिनो विस्तार वधारवामां कार्बन क्रेडिट गेम चेन्जर साबित थवानुं जणावता राज्यपाल आचार्य देवव्रत। જિલ્લાના તમામ ખેડૂતોને આગામી ચોમાસુ સિઝન માટે જરૂરી બિયારણ અને ખાતર તથા જંતુનાશક દવાઓની ખરીદી કરતી વખતે રાખવાની થતી કાળજી અંગે નાયબ ખેતી નિયામક ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી। જિલ્લામાં એસટી તંત્ર હવે ડિજિટલ બનતા 30% વ્યવહાર યુપીઆઈ મારફતે થવા લાગ્યા। તમામ 450 કંડક્ટરોને હાઈટેક મશીનો અપાયા। ભુજમાં વર્લ્ડ વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ અને વિશ્વ રેડક્રોસ દિવસની ઉજવણી અંતર્ગત રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા રક્તદાન કેમ્પ અને જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો। ભુજ પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી દ્વારા જિલ્લાના વિવિધ ગામોમાં ગ્રામસભા યોજી સોલાર રૂફટોપ અંગેની સરકારની પ્રધાનમંત્રી સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજનાના ફાયદાઓ અંગે વિસ્તૃત સમજણ અપાઈ। જખૌ બંદરે માછીમારીનો સુવર્ણકાર, 5,500 કરોડનું ટર્નઓવર, નવો કીર્તિમાન સર્જાયો। હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં વધુ 2-3 ડિગ્રી વધારો તેમજ અનેક વિસ્તારોમાં હીટવેવની આગાહી કરી। અને આઈપીએલ ક્રિકેટમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વચ્ચે આજે દિલ્હીમાં મુકાબલો। મુખ્ય સમાચાર પૂરા થયા।
2: વિભા શર્માના કંઠમાં આનંદ રાજ અને નિરજના

0: ¿Qué? ¿Una historia que me llamas?
1: ¡Tuja!
0: ¡Ojo, alma aquí! Bas ek adat fayyad hai. Kisi ko compounder kabhi mat banana. Aur banai bina na chale to, maitini ki hoon ka bilkul mat banana.
2: Joseph?
3: Yes, doctor?
0: Tum abhi kya hai Rozi ke paas?
3: Rozi?
0: Abhi jaata hoon. Ye chala, ab wo chala.
2: Dekho! Saath lekar aane ka, main andar hai.
0: Right, doctor? Saath lekar aane ka, main andar hai.
3: Oh, Rozi, I am coming, Rozi. Rozi, I
4: Doctor saab andar hai kya?
0: Haan ji, doctor saab hai, bilkul hai. Baithe thoda intezar kijiye. Main abhi aaya. Ye gaya, wo aaya. Wo gaya, ye aaya.
2: Oh, good morning, Commander saab.
0: आपसे जल्दी मैंने क्या बिल्कुल जल्दी नहीं है बैठिए मन्ना साहब आप भी बैठिए जगह वो गया
2: आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं कहीं बाहर गए हैं क्या
5: शायद अंदर ही हैं
2: अंदर हैं तो आ ही जाएंगे
5: माफ कीजिएगा नाचीज को वर्मा कहते हैं
2: और मुझे कुमार
5: ओ कुमार आपके कितने साल ज्यादा है कुमार साहब
2: जी अभी तक तो
5: समझ गया समझ गया
2: तो आपका पहला तजुर्बा है
5: जी आपका
2: जी अपनी बात ही छोड़ दीजिए साहब
5: तजुर्बे चार गिनती
2: पांच
5: क्यों
2: डर गए क्या
5: आपका कसूर नहीं है हुजूर आपका कसूर नहीं है
2: जमीना फैमिली प्लानिंग का जो है हम को साहब लक की प्लानिंग कर रहे हैं
5: लक की प्लानिंग
2: जी हाँ साहब लक की प्लानिंग
5: हमारे जोशी के मुताबिक इधर सातवें साहबजादे आए और उधर
2: आपका लक हुआ
5: बेशक बेशक
2: हम तो केमिस्ट्री में पूरा विश्वास रखते हैं
5: मुबारक हो साहब लगता है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा
2: कैसी बात कर रहे हैं साहब इंतजार तो करना ही पड़ेगा
5: जी साहब हो सकता है छठे और सातवें साहबजादे एक ही साथ तशरीफ लाए
2: वो हो सकता है हो सकता है हो सकता है ये भी हो सकता है
4: गुड मॉर्निंग डॉक्टर
2: गुड मॉर्निंग

0: esa la paz al caer, que pronto Dios viene más y pronto punto Dios va a ganar. Time after day, he answers every time in day.
1: At this point, when I let this out,
0: up to Mrs. Bukatai,
1: does he open it?
0: Looking at me?
1: Come on, that's right.
0: I heard that when that comes to point of it. I opened that wall, met a little home man.
1: I tried to open the door, but didn't you go close to
0: that? Oh my God, come on, that's right. I bought a finger up wall, met a little mirror, but after me, Marie, say Marie.
1: Marie, say? अच्छा भी हम जैसे आपके रिजल्ट के चक्कर में है डॉक्टर साहब
0: ऐसा रिजल्ट ऐसा रिजल्ट अरे कौन सा रिजल्ट का चक्कर हेलो यस डॉक्टर पालूवाला स्पीकिंग
1: मिसेस पालूवाला
0: वो इधर नहीं है
1: आप कौन है
0: आप प्रेसिडेंट मंडल की महिला है
1: तो
0: अच्छा अच्छा आप महिला प्रेसिडेंट नहीं महिला प्रेसिडेंट के तरफ से बोलता है
1: हाँ हाँ आपका महिला मंडल से हमको क्या मतलब बाबा
0: क्या महिला मंडल का वाइफ तुम्हारा प्रेसिडेंट है
1: ऐसा मदद मारी है
0: ऐसा महिला मंडल का प्रेसिडेंट तुम्हारा वाइफ है
1: देन
0: आसाम महिला मंडल के जलसा में तुम लोग हमारा मिसेस पालना वाला का टॉपिक में मत है तुम कहे को बाबा कभी पहले पर अरे
1: तुमको और कोई नहीं मिला
0: क्या बोला आने के लायक भी नहीं पर बाबा तुम्हारे मतलब क्या है सबका सब किसी दूसरे मेटरनिटी होम के पेरेंट है पर हम बोलता है अपनी लिस्ट में एक नाम और डाल दो मिसेस पालना वाला फालतू मदद वाली ओच महिला मंडल अरे महिला मंडल
2: एक्सक्यूज मी डॉक्टर
0: सर करो नहीं जरा

0: God. Hello? I'm Dr. Ganju. I am over here. What? I am impatient. No, not at all, doctor. Please inform me immediately. Okay.
1: Doctor sir,
0: आप अपना पेशेंट ले जाओ, उसको फर्स्ट पेन था.
1: What?
0: हाँ, दो वीक बाद आएगा.
1: अच्छा डॉक्टर, थैंक यू.
0: ओ मिस्टर वर्मा जी, हम तुमको लास्ट टाइम बोला था तुम अपनी वाइफ का मर्डर कर रहे हो.
1: सर
0: वो उसको ब्लड प्रेशर है, वो वीक है और तुमको पता नहीं है.
1: डॉक्टर बात ये है कि देखिए
0: नाम वो डॉक्टर पामिस्ट
1: मिस्टर
0: पामिस्ट वो लेफ्ट लेफ्ट पामिस्ट अरे लेफ्ट पामिस्ट नहीं
1: डॉक्टर वो तकबीर तकबीर
0: पामिस्ट बोले और जैन पामिस्ट देखो तुम अपना पेमेंट ले जाओ पामिस्ट के पास ले जाओ अभी रहने इसी पर आणि टट्टी टट्टी आणि पामिस आणि मगट मारी हॅलो डॉक्टर पालनावाला
2: अरे बाबा बंधू पालने पालनावाला
0: मेडिसिन
1: डॉक्टर डॉक्टर साहब वो आ रही है
0: आईंदा तो अंदर भेज चले
1: बॉम्बे साहब डॉक्टर साहब का दिमाग ठंडा अब तो ना तुमको इतना भी नहीं मालूम वो परिस्तान की हूर है मेरे मन की रानी है दिल को घायल करने का मसाला है रोजी उसका नाम है हाल पे दिल पहचान है रोजी अरे भाग जाते मैटरनिटी होम के
0: कैसे
1: अरे मेरे बराबर डॉक्टर मेनसा पिंजापुर में मैडम मिरांडा बस बीमा
0: अच्छा
1: आया धनवंती का आदमी भाग गया वो कई काम से अब बताओ एक अलग डॉक्टर एक अलग कंपाउंडर और एक अलग बुद्धि आय से कहीं मैटरनिटी होम चल सकता है बिल्कुल नहीं लेकिन नहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर अब आ रहा है
0: यार किसी तरह डॉक्टर साहब पर गुस्सा ठंडा करो तुम बस
1: अभी तुम जाओ
0: अच्छा
1: एक घंटे बाद आना मौसम बदल जाएगा
0: अच्छा अच्छा तो मैं जाता हूँ एक घंटे के बाद आता हूँ
1: एक घंटे के बाद
0: जो सर
1: ये डॉक्टर
0: वो आई नहीं जी नहीं फिर जाऊँ क्या मगज मारी

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही है हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमीडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है।

0: हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. जो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लो जाना चाहिए किसी भी फॉर्म में हो. सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए क्योंकि लाइट खाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपको बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए. उसमें आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको रेडी टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े. डिपेंड्स अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है.
1: और डस्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है. बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी. प्रेजेंट सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग. ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते. आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज.
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन. कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक.

चित्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए वजीर प्रेम का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। तर्ज बनाई है शांतनु मैत्रा ने बोल विदु विनोद चोपड़ा की।

शांतिमित्र और श्री राम कोप्स ने 1920 रैंडम कर में बोल लिखे हैं प्रशांत इंगोले ने, संगीत कौशिक और आकाश का।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए हिमेश रेशमिया का गाया और उन्हीं का संगीतबद्ध किया सनम तेरी कसम फिल्म का गीत, वो लिखे हैं समीर अंजान ने।

0: रस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारी खिली तनू।
0: आपके जीवन में भूलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तुम मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं मनोज मंतसर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज सुदीन नौटियाल की फिल्म का नाम काबिल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुझाव
1: कांग्रेस आईएमएल बीसी के और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, इनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अंकित ने कहा था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के दौर में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आपकाल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आनंद बोबी के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके पुनः तैयारी के काम चल रहे हैं। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस और यूएनआई

0: सीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजी ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अग्रेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद अनिल गोदेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरोती गल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सेनाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्य और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू पहले वो है जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। जमार जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन पैरा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक वार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम पैरा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। पैरा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में भारतीय ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

0: उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने

0: साथ फेयरनेस के साथ ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी विकट पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर

0: 400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूजन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पर आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संबंध है। त्रिनिदाद टोबैगो के अखबारी एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना होकर अब 35 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अधिक खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई, कई निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय भगतकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्रिया।
3: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर

₹92.48 के स्तर पर बंद हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज सहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के फाइनल

संख्या का 126 रन बना दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के बिगड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, ईसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते नदी प्रवासों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को

0: बनाने में किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के बाद उसे खड़ा हो गया।
1: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
0: डायरेक्टर में आओ देखो मैं आओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कोई बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने रहस्य में शुरू हो गया। बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के गटेलों में, सुनाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई का चमर होगा। बाबा बाबा बाबा की आवाज बुलंद होगी, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी

प्रक्षेपण कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म लेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

नया आज के अंकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950 प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

इसी में बन जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए दाग जम गई। हसीना बन जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान

शहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी। और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आमदान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे पद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब

इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसमें एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश बेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरे। सन 1976, खून पसीना।

0: 1983 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का
2: जुगड़ का तो कर

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़ी चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

साथ में प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गई उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है लेकिन उनका सिनेमा है और उस सिनेमा का कमाल है। किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

आज के समाचार कार्यक्रम आज के दिन था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब लीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पास है विशाल हस्तियों का अनमोल खजाना। सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: पांच साल पहले का कलाम सर जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार हयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन।

0: Ό,τι βρείτε. Ρεστούτσο Γκουτζέτη.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

श्रोताओं नमस्कार। छायागीत के साथ हाजिर हूँ आपके दोस्त निहाल शर्मा। बचपन का साथ छूटा तो मन में एक आस ने घेरा डाला, कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजियारा, वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू, उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। झूम उठेंगे रात दिन खुशियाँ आँखों से छलके, न खो जाए कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने, ये सोच कर ही तो बंद कर ली है खुशी से अपने पलके।

देखो ना, वो दूर से बहती आई हवा लिए आई है सांधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आहट तो कभी गूंजती है मन में एक धुन। लगता है देखे बिना ही मेरे मन ने उन्हें ही लिया है चुन। सखियां सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली है सारी रातें। पर इस खजाने में बची हैं चंद रात और मुट्ठी भर सपना। तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ इन्हें बनाकर दिल से अपना।

आखिर हुआ इंतजार खत्म और आ ही गया वो चिचोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारे बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपना जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को। होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज लांघते हैं।

सुन रहे हैं छाया गीत। हुआ वही जिसका ना अंदेशा था न खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीगती पलकें भीगते जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

सूखे होंठ, सामने तो है सब कुछ, अब किससे कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर तो क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम, सुबह शाम दिन तमाम।

इस परदेसी ने किया है ऐसा जुल्म कि हम रहे ना हम। ये आदमी उसकी कभी मनाए गम तो कभी मुस्कुराहट का आलम। उसे याद करके जितने आंसू बहाए उसकी ही याद में उतने ही गीत भी गाए। शायद यही तो है प्यार का सर कि जिसके लिए बेचैन होते हैं उसको ही याद करके चैन से सोते हैं। प्यार की इस उधेड़बुन में हम तो उसकी ही धुन में खोते हैं।

मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया, ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया।

मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया, ओए कौन पद जैसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।

0: रे गया।
1: एक पद देखे मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।
2: छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: हरबंदन है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएनएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन

शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राठकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरण पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुरेखा शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और पंकज तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।

0: This is Akash Rani, the news read by Sarah Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was formalized.
1: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
2: प्रिडिक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो एंड एट प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशन वर रिसीव्ड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम सफिशिएंट टाइम वाज आल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकंड नेम वाज प्रपोज्ड देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर शुभेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी
1: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ.
0: Mr. Shah expressed gratitude to the people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality.